बावन कर्म सुखी देख स्वरूप पूरन भैया का दर्शन भेद दूसरी भूख ए मेरे नाम पर पड़ती है भूखन साइयों का दो गई आगे मिली आती है चकोर की तरह चंद्रमा में सोने चंद्रमा यह चंद्रमा जिसको चंद्रमा में रोशनी मिली मार चाहो आपने कितनी चाहिए काका पैदा बकरी आगे गिर गया पुरुष भी एक बकरी का है मां ने किया है और पुरुष से एक है ना बकरी का भी आपा गरीब आदमी है किसको पढ़ा रहे बकरी आज तय कहते भगवान तुमको बकरी का ख्याल नहीं कर रही है मैं और बादशाह बन जाए तो सॉरी बोल कोई अमीर छोड़ जाएगा अदा नहीं लेगा नहीं मानते सब कोई मानती पता की कि मेरी पुत्र को और दाता मिला है और बादशाह मिला है जिसको बादशाह ही ब्राह्मण नहीं बेटे अमृत ने सारी दिशा में शहर का दरवाजा देख कुटुंब तो पैदा उसे जाके खड़ा हो जाए जिस वे जो लोगी पैदा बकरी है मैं कोई बात जान के अपनी बकरी से जान के मैं मानता रहा कि फिक्र की गुजरी भी कही सुता लिया मां ने पुत्र ने जगाया उसके शहर का देश हर की बात होते बीस हजार में पूरा खुल है ते कोशिश कर थोड़ी देरी के बाद शहर का गेट खुल गया शासन इस शहर में वजीर अमीर अहकार सारे प्रश्न जोरदार है कि प्रश्न ये सके थोड़ा जो सफर है थोड़ा जो डरे पर सारे छोटा जी माया पाते कह लगे कि अब तो तुम्हें साढ़े बादशाह मैंने क्या दिल्ली मैं दादा भी मैं तो पैसा बकरी का चार पाला जाती हाँ कनाल का पुत्र कहना देखिए अपना मेरे पता कि तुम्हें कौन हो नीच हो ऊंच हो कमाल हो पर जो उसने फैसला किया है उस संसार आज तो तुम्हें साढ़े बात फैसला तेरा फैसला वजीर ने किया इस राज का जरा राजा की उम्र के और एक संतान को उस रेले में आया सूर सी बादशाह की गति से वजीर की सी है बादशाह की गति से बादशाह का पुत्र चलता थी सारे का पुत्र कोई नहीं सरकार ने ही फैसला किया कि आज अमृत वेले उस वाय को भी अमृत वेला खास समा हो सकता मेरे आगे अमृत वेले जूते हम दोनों कुमारी पर ऐसा अमृत वेले भगवान का बड़ा सोना बगीचा के जिन्हें हो आई आई आई अंजारी शासन जिन्हें आपकी जात की दुर्गन ये उन्हें अब मन जान रहा है कि जितनी भक्ति प्रणाली में होती है परीर जी ने कोई कह चुका है कि हरिदारात सतपुरी मंडी है पूरी चंद्र भक्ति अब तो तेरे भक्ति पाल की मंडी जाती है जो भी रंग रहता है तो सिखाओ जिसे गुरु ने सोनार पास सारे चीजें दिखी उसे संतुष्ट के पास चाहिए सिखो बड़ी रात अमृत वेले अमृत वेला सपना हरियाली विशा पर जी कहते रात तो पूरी उम्री है दुनिया मेरे न पालो और जिना मैं निंद्रा मेरे बिना मिल रहे तो बड़ा उसे वक्त है अमृत वेले जाने वाले लोग गुरमुख दासनाल भी पहले आए हैं माता और पहला बच्चे नहीं कही थे गुरु जी का कहते हैं शासन से जागृत रहे कि नहीं जागृत वाले भी कुछ तेरा सुखा भी और की मिलना है पर मैंने क्या फैसला किया है अमृत वेले शहर का गेट खोलो जेरा पहला बच्चे लगे उन्हों इस राज के बीच में दिखाया जाए मेरे सुने हैं कि भी रचना भी जाते हैं अनुभव लगा तुम्हें भी सारे जगह सत्ता जी को निचलने वाला आज बीच में राज पहुंच गया स्नान पीते अस्त्र लगाए रूह केवड़े लगाए कितनी पोशाक पहनाई सिर पे तार रखने लगे कह लगे ठहर मैं तो अड्डा बात कर था जी हुक्म बंदों के बंदा में कह लगा मेरे नाल से अपने की आप सुनते
ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਰੂ ਨੇ ਸੱਚਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤਿਆ ਆਓ ਬੈਠ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਨੇ ਤੂੰ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੈਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਹੋ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ

के निर्जुल रूप हो, के निर्जुल पूर्वी न पार पाव हिंगला हिमाल जाद गोर घर देश कुल गाव तेरा नाम है। पूर्वी न पार पाव हिंगला हिमाल जावे गोर घर देश कुल गाव तेरा नाम है। अरब के अरब तेरा नाम है। फारसी फरंगी

करुणालय है अर्थालय है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार पाप हरणी है।

0: नदी पार कर रहे सन, एक अबला स्त्री उन्होंने मगर मगर वेख्या। नौजवान छाला मारदे होए नदी पार कर रहे ने, ओ अबला स्त्री भी ओनू भी हौसला आया
1: है ते पावे ओ निर्बल सी, पर वेख्या इतने सारे नौजवान लंघ गए ने ते मैं नहीं लंघ सकदी। ओने भी छाल मार के ते नदी जदों मारी छाल ते ओ भी पार पै गई। बाबा जी कहंदे ने महापुरुष नाम जपन वाले संत मानो नौजवान ने इस दुनिया विचों जित के जांदे ने, पर तू अपने आप नू निर्बल समझ दे, पर ओना नू वेख ओ पार पै गए ते तू किवें ना पार पएगा। एक वारी तू नाम जप, संता दी तरह तू भी मार दे छाल, उस गोरी दी तरह तेरे मन विच भी धीरज आवेगा। बाबा जी कहंदे ने जे नहीं जपेगा मेरा तू सोना ही कठा करना है, ते फिर अगे आरा तैयार है तेरे लिए जिदे नाल तेरे दो फाड़ कीते जानगे। कहंदे ने

बच्चे नूं जुड़दियां 6 महीने हुंदे ने। बाबा जी कहंदे ने वेखो इस दी प्यारी विच 6 महीने लगदे ने, इक इक त्रोपा लगदा, इक इक लत बांह नक अखां जुड़दियां हन। 6 महीने त्रोपे लगदे रहंदे ने, जदों टुटेगा आवाज भी नहीं आनी, इको ही झटका लगेगा, इसने खत्म हो जाना। कहंदे ने

जब लवनी भाग लीलार तुझे तब नौ भरते तिरते बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूड थे कब हूं मिट है नीरे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जगतारण को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ अनुगुरु नानक पातशाह अनुगुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है और देने कोई संकट भी आएगा तो 84 लख जूर तू बच जाएगा तो प्यार नाल सारे आखो अनुगुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगतं दे सेवादार पातशाह हुक्म करो हलम कह लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया पर कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बनाए अज गुरु की संगतं की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैवी गुणों वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु की संतान वास्ते आप चक्की थी आटा तैयार किया फिर साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद भी अमृत देख तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाए माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसे सिख नू बुलाइए हजूर कह लगे नहीं गंगा जी असी आप भी अपने सिर पे तो संजय पातशाह जी ने कड़ा प्रसाद दी दे अपने पवित्र पावन शीश से रख चादर भी हुक्म मारी तुर लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतां की सेवा करनी तो तुसी भी ठंडे जल की गागर पर जिथे संगत नूं भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सिर दे उत्ते गागर जल्दी रख ली हजूर तुरन लगे कहन लगे गंगा जी पखा भी नाल लै लो गर्मी बड़ी तुरिया जाते अज पंजवा गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल की रखो धन गुरु रात दसो गुरु तुरिया जाता है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरती है समुद्र को मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे नहीं आता तक लो प्यारी सार सिंह नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर अद्धी रात दस गंगा जी सुनो ना मेरी सिखा के प्यार वाली आवाज भावे उन्होंने प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संगत प्यार भी किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बरसित की थी माता गंगा दे कन्ना विच प्यार की आवाज आ रही है केड़ी सारी संगत रात का समय प्यार इज भी है ते अरदास कर रही है मेरा

अपने प्यार दी मिसाल कितनी सुंदर है मेरे दाता जी, बिल्प करे चातक की त्रिखा न उतरे सांस न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हमको लीजिए गोद कुमारी गुरु दर्शन मैं गंगा जी कहता क्या एडे प्यार वाले तेरे सिख हां गंगा जी आओ चल के छेती दर्शन अगे गुरु की संगत कीर्तन करके ते हम आराम कर रही साहब जी पहुंचे जथेदार बेनती की जथेदार जी धन गुरु नानक दिया संत वास्ते कला प्रसादी दे जथेदार जी उठ के बैठ के सारी संगत नु सावधान किया प्यारी सार संगत उठाओ कोई गुरसिख आया है गुरु ने उन्हें मन प्रेरिया है लंगर का प्रबंध नहीं हो सकिया कला प्रसाद जी दे जाए है उठो पहले अरदास कर सिख में जो भी गुरु वालों दास मिलती है ना पहला अरदास कर ये अरदास करे तो गुरु की बख्शिश बन जाती क्योंकि गुरु की मोहर लग जाती है कार्य प्रसादा तैयार हो अरदास करो गुरु का लंगर बन जाए क्योंकि अरदास की हो कोई कार्य नहीं गुरुओं की कोई वस्तु मिली चंगी कार मिली है पहला गुरु की अच्छा तेरी चंगा कर मिले जय प्रसाद बसा सुख मंदिर किसे पे आए तो सारी संगत सावधान जथेदार ने गल पला पा के अरदास की थी ऐ धन गुरु नानक पातशाह तेरा प्रेमी सिकड़ा प्रसादी देख लेके आया है सिख नू नाम दान बख्शी सिख नू सिखी दान बख्शी अजू कह लगे गंगा जी सेवा का फल मिल गया जी अज असी प्रेमी सिख बन गए गंगा का सेवा का फल मिल अरदास करो जी साहबा ने अपने हथी सारी संगत को कला प्रसाद एक गंगा जी हूं जल भी चला साहबान के सोहने हथा जिन्हें जिन्हें प्रसाद लिया उन्हें ही जपया श्रीवाल जल छकाया जूठे भांडे कौन मांझ रहा है माता गंगा जी वो हथ पवित्र जो गुरु घर की सेवा जो गुरु घर की सेवा तू मांझे हैं भाई साहब जी लिखते फिर सेवा बिन हथ पैर होर मेहबल कर दी सारे जल सकिया भुख भी दूर से प्यास भी दूर और संगत आराम कर रही है तर गुरु अर्जन देव पातशाह जी लैके पक्का सारी संगत को पक्का कर पक्का कर दिया प्यार क्या

पखा फेरी पानी धोवा तो जो देवे सोखाई आज आप गुरु की असंता पखा बाबा जी बाबा जी सिंह जी महाराज पूर्ण महापुरुष जिन्होंने सहज श्री गुरु साहब साक्षात गुरु नर ज्ञान बाबा जी वचन करते सन भाई जी गुरु साक्षात समझोगे तो साक्षात ते नहीं समझोगे तो फिर कौन रब बैठा हो भी नहीं कुफरी का जिक्र है शिमले तो उपर है कुफरी पार्टीशन तो पहले दिया गल बाबा जी कुफरी महाराजा पटियाले का उस वे राय महाराजा यादविंदर सिंह जी थोड़ा ही समा हो चलाई कर दे कौम दे बड़ी महान अस्थि सन उन्होंने माता जी राज माता उन्होंने बेनती की बाबा जी गर्मी है पंजाब आप उसे बख्शिश करो बेनती प्रवान हो गई पहला तो बाबा जी कह लगे सानू लोहड़ी नहीं जिथे गुरु असि राजे महाराजिया को जा करना है तो राज माता ने गर्म पला पा के अरदास की बाबा जी सन गुरु नानक पातशाह भी तो राजे शिवनाथ के घर गए तो कुफरी बाबा जी पंथ पूर्णवासी का समागम सत्संता रोज का प्रवाह चलता है नंद सर पर पूर्णवासी का खास मन उस वे लैल तो रेंगे सन संत महाराज संत जान सिंह जी सारा जत्था कट्ठा तो ख्याल आया चलो मना चल के बाबिया के दर से हाजरी पाइए पूर्णवासी के समागम लैलपुर तो संतान लाहौर जलंधर लुधियाना दिल्ली देहरादून प्यार वाले संगी बाबा जी की संगत करने वाले

उनसे खा नहीं तुम्हें सदगुरु आप समझे फिर के चौधरी रसड़े प्यारे कल तिना के पास तोड़ तिना की से मिले जी कहो नानक की बाबा पिताजी पहुंच गए जाके साहबा जी उसको जोड़ा ले लिया रो के क्या नीचा रूज करने वाले पत्ता नु पावन करने वाले तू ही नहीं कॉपी अगले यार कहते सोने सुख तू भी छोड़ साक्षा इतने बैठे हो जोड़े पे चार हजूर कह लगे बाबा तो इन्हें नेत्रा नाल धन गुरु नानक के दर्शन की तीर तरह नीज ला के वेखे जोड़ा किसता है बाबे ने नीज ला के तकिया सचमुच जो जोड़ा मेरे धन गुरु नानक पास संगत हर प्रभु गुरु कितने नेत्रा चाहे हिरदे पे भी खाते रिश्ता गुरु की बख्शिश द्वारा जो गुरु नानक ने साक्षा आप इतने सुन संगत वाल वेखो इस वे संगत ने तकिया उपा मार के रही जी पुलकी जेदे को गुनाह पुछाने सन ओनू जोड़िया जेदे को जी दान लैना सी बाबे ने कहा पातशाह करो कृपा हजूर उठे श्री हरिमंदर साहब जी के अंदर आके विराजमान होए हरिमंदर साहब जी का ध्यान दर कीर्तन संगत दी नजर नहीं त्रप्त वाजू जा रहे गुरु ने कोशिश की थी क्या प्यारी सा संगत रोवो न पातशाह एडा वड्डा पाप कर बैठे हजूर कह लगे नहीं पातशाह तुसी इतनी खेचला की थी हजूर कह लगे थोड़े प्यार दे उते थोड़ी प्यार दी ज्योति प्यारे दे दीदार नक्श लाओ हजूर कह लगे पहला पंक्ति को जी रस्ते पड़ी दर्शन प्यासी फिर स्वराज चितवो वर्दी नींद संगत ने फिर घर के पड़े आ अगली पंक्ति पढ़न लगे अदू कह लगे ठहर अगली पंक्ति चाहे खोल कपट गुर मेले आ नानक हर संग वीर आओ फिर थोड़े पहला मन दे किवाड़ तक खोलिए आपस मन दे किवाड़ दरवाजे जेड़े ने यह पूरा गुरु ही खोल सकता दर्शन दीजिए खोल किवाड़ ओ किवाड़ मालिक खोल जिसे बख्शिश कर इसे महापुरुष ने लिखे मुर्शद ने जद बूहा लाया मुर्शद लो मुर्शद ने जद बूहा लाया अंदर जाती पाई हर पासे गुरु नानक बैठा निरंकार छबलाई चरना विच पदम है सोना जो दुनिया नू ठारे चल सूरज इथे पानी भर दे मानक मोती सारे ला दिता हुआ सज्जन फाग का ला दिता सी भूमि डाकू का ला आओ प्यारे हो मेरे बच्चे थोड़ा भी बुआ ला सारी संगत थके हुए हजू मैं अमे दृष्टि सारे वाल थकिया बख्शिश की नहीं देखिया जपो सतना नाम की बख्शिश नाम की बख्शिश द्वारा नाम रसना द्वारा हिरदे से जाके वसिया प्यारी सार संगत नाम का धक्का जिसे ने वजह भूआ फुर गया अंदर से बाहर नाम ही दिसन लग गया अखो तेरी हजूर कह लगे हूं पढ़ो संगत ने फिर पढ़िया खोल कपट गुर मेले नानक हर हर शायदी तो फिर हजूर कह लगे जो गुरु के प्यार सिख जुड़ता है गुरु उसके सहमत करता है बख्श गुरु ने बख्शिश संगत से की भी की है क्योंकि जो संगत गुरु लैन वास्ते पंजा गुरु नानक आप गया है तो भी गुरु नहीं लिया एक दिन नहीं कि भाषा वाले हो प्यारी संगत एक वीक पूरा माताओं भैन बच्चिया गुरु बजुर्ग वीर अदी नागा नहीं पाए एक नागा भी कीर्तन च नहीं पाया बाबा जी बचन करते सर जेड़ा गुरु ने दर्शन च नागा नहीं पाता गुरु मेरा च नागा नहीं पाता यह तो सिद्धि सारी संगत ने मत्था टेकिया पातशाह इन्हें रहमत हजूर कह लगे हाँ सात संगत यह प्यार गुरु कार्य यह बख्शिश है चल सर्व गुरु एक पैदा जाए चल सदगुरु और पैदा
आई गुरुदास जी के कोल सिख ने फिर बेनती कर भाई साहब यह अवस्था केड़ी है जो गुरु ने इन्होंने बख्शी है हजू भाई साहब जी कह लगे सहज अवस्था सहज अवस्था ज्ञान को कह इन्हें उत्तर पार गुरु का चानना पे कह लगा भाई साहब अलह दसो सहज अवस्था गुरु की कृपा द्वारा आती है और भी कोई साधन है भाई साहब जी कह लगे छह पौड़ियां सहज अवस्था जी सहज अवस्था ज्ञान है वोदिया छह क्लासा छह लैसन कहने तो भाई साहब जी के गुरु गुरमत रीते गरीबी पहली क्लास दुनिया के पदार्थ मिले हैं तो मन के अंदर निम गरीबी का मतलब निमत है नहीं लीरा पाए कपड़े मैले पाए गरीबी का मतलब है निमत दुनिया के पदार्थ मिले हैं सिख अरदास कर दे तू जागे अरदास कुमारी जी और पिंड सब तेरा कौन नानक सब तेरी वडियाई कोई हम किस कोल कुमाया गुरमत रिदे गरीबी है ते दूजी पौड़ी केड़ी है पर नारी देने न जा इतना उच्चा करैक्टर सिख लू पर धन पहन तुल त्रिया परमात हो सिख धर्म कितना पवित्र जीव एक नारी जती है जती सती नहीं जाए गुरु से पर नारी दे नेड़ ना जाए तीजी पौड़ी पर दर दे हाथ ना ला बेसिक वास्ते मिट्टी दी चौथी पौड़ी पर निंदा सुन आप बता किसी भी निंदा ना करनी है ना सुन एक मेरी नानक सर बाबा जी कह लगे संगत रूप ही निंदा ना करिया कर एक उठ के प्रेमी खड़ा हो गया बाबा जी साडा तो सुभाव बढ़ गया निंदा करन जिहदे कोलो मतलब हल हो जाए ओदी उसूल करन लग जाते हमें जानते भी है कि आदमी चंगा नहीं पर स्वार्थ पूरा होया तरीफा ने जी बड़ा उपकारी इन्हें वर्गा सिखी तो जे मतलब अल्लाह होंदा शुरू कर साडा तो सुभा है बाबा जी कहने लगे चंगा निंदा भी करे करो उसको भी करे सारी संगत हैरान होगी बाबा जी हमें तुम्हें किया नहीं करनी थे बाबा जी कह लगे जी थोड़ा सुभा बन गया है तो निंदा भी करो उसको तभी बाबा जी और किस तरह बाबा जी कह लगे जी निंदा करनी है तो अपनी करो सब हो गए निंदा करनी है तो अपनी करो जी उसको करनी है तो मेरे तन गुरु नानक करो वाजे मत गए भला ही पता तो दूजी निंदा किसे निंदा भली किसे की पर निंदा सुन आप हटावे ते पंजवी पौड़ी केड़ी है थोड़ा समय थोड़ा ही भावे थोड़ा सोना ते थोड़ा खाए यह भी बेनती की थी बाबा जी कोई मिकदार नहीं लिखी भाई साहब जी कितना थोड़ा जी अगे अठ रोटियां खानी है तो हम पंज खा ली जी अगे बारह घंटे सोने और दस घंटे सोनी तो बाबा जी कहने लगे नहीं इतना थोड़ा खाओ जिदे नाल सारा दिन शरीर पीड़िया ही ना खटे डकार ही ना मुसलमान रोजे रखते हैं हिंदू मत च वर्त रखे जाते हैं इहदा मकसद की है कोई रोजिया से वर्ता नाल कोई रब थोड़ा खुश हो जाए इहदा मकसद यह है कि रोजा रखना थोड़ा खाना जिदे नाल शरीर की शुद्धि आम डॉक्टर कहते डॉक्टर जी शरीर भारी भारी रहती है एक दिन फाका कर ले मतलब रोजा रखना यह रोजा ही है ये शरीर जोड़ा है वो ठीक हो जाता है तो गुरु ने कहा है कि मेरा सिख एक दिन रोजा या वर्त नहीं रखता गुरु का सिख रोज ही रोजा रखता है वो किस तरह थोड़ा समय थोड़ा ही थोड़ा अल्पहार कलगी पातशाही ने लिखा अल्पहार इतना थोड़ा खाओ जिद खट्टे जकार ही ना हो इतना थोड़ा खाओ जिद शरीर सारा दिन पीड़िया ही ना सब रस मिठे मनिए सुनिए सालोने हर कुर्सी मुख बोलने मार नाद किए छत्ती अमृत पाओ एक जग को नजर करे
बाबा और खाना कुछ ही खुआ जिस खाते पर पीड़िए मन में चले तो खड़े न खा, ये जरा मन विकारी मन बुरे पास पे जाए और खाने छंड ये कितना थोड़ा समय है बाबा जी कहने लगे इतना थोड़ा समय जी जरा अमृत वेला तो क्या क्योंकि अमृत वेला खास पक्ष छेवी पौड़ी केड़ी है ऐसा जी कहने लगे सतगुरु का उपदेश हमारा गुरु का उपदेश जो गुरु का हुक्म है उन्हें चुने स्वागत कौन है जो पति का हुक्म है लैट पुत्र कौन है जो माता पिता का हुक्म है सर सिख कौन है जो गुरु का हुक्म है जो गुरु का हुक्म अंग छकना माणी पढ़ सत्संग में जुड़ना बुरे को मानो छड़ना चंगे ही अपने बनी ये गुरु का हुक्म है गुरु का सिख मन के सिखी की रोशनी चला जाता है फिर जिथे सिखी की रोशनी है उथे गुरु सतगुरु का उपदेश कमावे जिस वे छे पौड़ियां चढ़ जाता है छे क्लासा पढ़ जाता है तो भाई साहब जी कहते वो कौन बन जाता है फिर भाई साहब जी कहते वो गुरमुख बन जाता है तो भाई साहब जी कहते गुरमुख सोई जो सहज उन्होंने सहज अवस्था की प्राप्ति होती है तो आप अनुभव बार मिलिया संगत दूर नेड़े उचल के आई हैं संगत आप भी तन हो इतों के प्रबंधक भी तन होर भी कई दूजे गुरुद्वारा साहब के प्रबंधक गुरुद्वारा रामगढ़िया साहब सेवकों ने पिछले टूर के उथे भी कीर्तन द्वारा हाजरियां पही बड़ी संगत जुड़ती अच्छ गुरमुख माई पाई एक आए उन्होंने दर्शन करके मेरा लूह मूह पेट कर नहीं तो कई थावान से साढ़े अंदर एक कमजोरी आ जाती कि मैं फलाने गुरुद्वारे नहीं जाना फलाने गुरुद्वारे और सिखा जिसे गुरु का नाम आ जाएगा गुरु तो एक ही है कोई ना चीज मैंने बड़ी खुशी हुई मान कुबेर करे वस्तु सामू सदा ला के गुरुद्वारे देश बना लो कोई हर्ज नहीं है गुरुद्वारे बनाने वाली चीज नहीं है पर गुरु का जो निशाना है वो साढ़ा एक सह श्री गुरु साहब जी की पूजा गुरु की संगत गुरु नानक का नाम गुरु नानक की बाणी गुरु नानक का ध्यान जब सत्संग जिते चार चीजा हो गई बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते सर उ गुरु नानक जरूर होवे अच कोई समा ज्यादा हो गया है पर ज्यादा होया जाया नहीं हो क्योंकि अज इस वीक का बनाया प्रोग्राम आखिरी कीर्तन से रात का तो कुछ समा चढ़ गया अच सवेरे जिसने कीर्तन का भोग पाया तो गुरु प्यारे बैठे सामने कह लगे भाई साहब पिपली साहब वाली साखी तुम किधरे अफ्रीका नैरोबी की थी ते काफी रिकॉर्ड गई ते वो साखी सुनी है चित करता है फिर फिर सुना दे उन्हों का हुक्म सोचे क्योंकि बाबा जी के पिंड के नेड़े ही रहने वाले सौकिया के रहने वाले उन्हों का हुक्म से थोड़ा प्यार पिपली साहब वाली साखी आप जी ने समा कुछ ज्यादा होया तो समा सक रहा है आई करी लगती जो सौ दान भी आवे तो प्यार को लेकर सेवक का चित बड़ा पसंद है नहीं तो इतना चिर रहना बड़ा कठिन अरे गुरु की बख्शिश है यही रहमत है गुरु की जो साडा मन गुरु के नाल जुड़िया है तो आओ अरदास करिए अनंत वर्जन दे पातशाह साडे ते बख्शिश करो ये जड़िया मंजिला हैं गुरमुखी दे गरीबी ये सारिया पौड़ियां असं पर इन्हों से चढ़ने की कोशिश करिए आस्ता आस्ता ये दात ये मंजिल साढ़े भी मुक जाए तो साड़ी मनुष्य यात्रा खत्म

एक बारी सारे बोलिए धन गुरु तेग बहादुर साहब। कितनी सच्चाई प्रगट कीती है पातशाह जी ने, अखीर नतीजे ते पहुंच के आख देन

साहिब गुरु रामदास साहिब जी भी बचन करते हैं, आख देन ऐ मेरे मन कुछ समझ, जितने तू रिश्तेदार वेख रहे अपने मतलब देखन, जदों तेरे विच खून नहीं रहना, तेरे विच कोई उन्हां दा मतलब नहीं रहेगा, उस दिन तेरे नेड़े भी किसे नहीं टुकना नहीं। इसलिए प्यारिया जप सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु रामदास साहिब जी आखदे ए जो संसारे के कुटुंब मित्र भाई दी सै मन मेरे, ते सब अपने स्वाय मिलासा,

माता कहती है मेरा कमान वाला पुत्र चला गया, स्त्री वाल पुट रही है पर गल बन नहीं रही। कबीर जी आखदेन कितना ही पै रोन पर वो कम नहीं आउंदे, विचारा मनुख कल्ला ही जा रहे। भगत आखदेन

तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक राजी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था, हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती, यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले।

जो सवाल पहला भी पूछा गया सी, इज अवर ट्रू सेल्फ और इज अवर ट्रू सेल्फ अवर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस. कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस आर नॉट टू थिंग्स. सो अवर कॉन्शियसनेस इज अवर ट्रू सेल्फ एंड कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस.

यू गेट। सो जितना ज्यादा अभ्यास करते जावे करते जावे उस दे विच होर भी चीजा हम जो अगले कीर्तन च विचारियां जान दियां उतना असीं अपने ट्रू सैल्फ के नज़दीक पहुंचते जावे उतने ही शांत होंगे जावे उतने ही ट्रैंकुल होंगे जावे उतने ही स्टिल एंड साइलेंट होंगे जावे उतने एकांत और चुप रहने की आदत ज्यादा बन जाएगी। जो जो ये चीज बढ़ेगी एकांत प्यारी लगेगी। महाराज जी गुरु नानक साहब जी की बाणी की एक तुक है, रहे एकांत एको मन वसया आसा महे निराशो। कहते वह सज्जन फिर एकांत विच रहिंदे हन ज्यादा क्योंकि अपने सैल्फ नाल रहिंदे हन। एकांत का मतलब यह नहीं कि कल्ले हुंदे हन, वह हुंदे हन परमात्मा दे नाल, वह हुंदे हन अपने अंदर उस जोत दे नाल। जो उस जोत दे नाल जुड़िया पिया उहदा कदों दिल करदा बाहर निकलूं, टाइम वेस्ट करन ते अपने आप नूं डिस्टर्ब करन, उसनूं तां मुश्किल बन जांदी है अगर उसनूं अपनी उस जोत नालों टुट के होर किसी दे नाल कुछ बैठना पै जाए। रहे एकांत एको मन वसिया आसा माहे निराशु, उसकी ये अवस्था हो जाती है। नंद साहब का पाठ सारे राम।